तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकौं, तू ठाकुर ऊच भगवाना।

पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा द्वैदाई दाया खेले सगड़ जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हदूर।

0: सोअंत
1: सो बहर अनंत
0: कट कट
1: व्याप रहा भगवंत
0: तन्मय
1: आकाश प्यार
0: हर लोक को।

साल मद मधुर पियाए है सोबत सजासन बैलासन दे अंक माल प्रेम रस बिस्म होए सहज समाए चातुर्क शब्द सुन अखियां उघर गई चातुर्क शब्द सुन अखियां उघर गई शब्द सोन शब्द सोन

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण शाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

गुरु के साथ समित आओ। साहिब गुरु रामदास पातशाह दे उच्चारण कीते हुए शब्द दे रूप विच पड़ताल हर गुण गावो जगदीश राग कांदा और शब्द धन साहिब से गुरु रामदास पातशाह जी।

विष्माद नाद विष्माद वेद विष्माद जीव विष्माद भेद विष्माद रूप विष्माद रंग विष्माद नागे फिर जन विष्माद पौन विष्माद पानी विष्माद अग्नि खे डैबडानी विष्माद धरती विष्माद खानी विष्माद साध लगे प्राणी विष्माद संजोग विष्माद वजोग

मैं तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत अन्ना जी शब्द रम करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

कबीर साहब सत्संग जी हो, दुनिया विच बड़े बड़े खुशी दे मौके हैं और तरह तरह नाल दुनिया अपने मन की खुशी जाहिर करती है। इस दुनिया विच जेड़े भगत लोग हैं, जेड़े रब दे बन जाते हैं, जेड़े परमात्मा दे चरण अपने मन विच वसा लैंदे हन, जिन्हां नूं अपना सच्चा पति रब लगन लग पैंदा है, एका पिर सखियां सब पिर की, खसम ते ओ आप है असी ते सब दासियां हां। कबीर साहब कह रहे हन, मैं किहो जिहा दूल्हा मैनू पाया, मैनू रब वर्गा दूल्हा मिलिया है। राम राय सो दूलो पायो अस वड भाग हमारा। बराती मेरे नाल कौन हन, मेरे पंजो तत्। रब ने मेरे ते कृपा कीती है, मेरे मन रूपी सेजा ते आके चरण पाए हन, मेरे ग्रह आए राजा राम पथारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेती तेती करोड़ देवता इस गल दा साक्षी है। की साक्षी है, कह कबीर मोए ब्याह चले हैं। पुरख एक भगवान, पुरख एक है, पुरख ओ वाहिगुरु आप है, असी ते सब उसतियां दासियां हां। तू ठाकरो बैरागरो मैं जे ही कण चेरी, मेरे वर्गियां लखां दासियां करोड़ां दासियां तेरे दरवाजे ते चाड़ू पईयां दिंदियां हन। मैं जेही घन चेरी राम तू सागरो रत नागरो, हों सार ना जाना तेरी राम, सार ना जाना तू वडदाना कर महरमत साई, कृपा कीजे सा मत दीजे आठ पहर तुद त्याई। ऐसी मैनू मत दवो, ऐसी मेरे ते कृपा करो कि मैं आप जिनू अठो पहर हर घड़ी तुहानू जपा वाहिगुरु। ते जिन्हां ने वाहिगुरु नू जपया उन्हां दी जिंदगी दा नाम ही सुख बन जांदा है, ते जेड़े रब तो बिना हन ओ दुखी हन, ते जेड़े रब वाले हन जेड़ियां खसम वालियां हन ओ सुखी हन। ते गुरु कृपा करे ए सुहाग तुहाडे जपण वालियां दा बनिया रहे। कह कबीर मोए ब्याह।

राम को पोपर जानो राम को मेरा कांडा लात्या जाए हों बन जारो राम को।

सितंबर स्वामी सच में आचे साथ रहे सबको सत समावे रिक कह रहे प्रभु राम नाम देवा में।

ये पावन शब्द पावन राग साडे सत्कार योग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वो भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शन दार संगत दे होए ने तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो रागां दी बंदिशां जरूर सरवण करवाउणियां हन आओ इस तो पहला एक रीत फिर गायन करांगे पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल सरवण करांगे।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत में बहुत भी आला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

मैं मछली कैसे अपना कैसे देखा तय तय उनसे मिक्सी मछली पानी को बिछड़ी नहीं तो जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म च रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है, जिस वेले मनमत्र आ जाता है तेरे लगी आन आता है अपने पाने जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दाव पंछी की जाने आकाश के दावड़ा पाई सजास की जाने गुरु के दावड़ा है मेहमान न जाने वे वा पाक तेरा मत भाई सज्जा चला जा गुरु कौर ये विचार बनाया है तो एक चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु नु देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करे गुरु मैनू भी दर्शना दिता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो 9 महीने ढक दिता है जे तेरी पत्रिका लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने ढक देगा उन्होंने की कर मैं नहीं जा चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड पड़ते आया की वेखिया जिथे कखा की कुली सी उथे आलीशान मकान बनया बिर पिया तक जिन्हें सुदामे ने तकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण से सुदाम दोवे सुदीपर की कोल पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन समीपर ऋषि की घरवाली ने किया बचे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया जंगल दोवे तुरंत समीपर ऋषि की घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्दी भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामे हैं गल सुन कौन है लै थोड़े जे छोले हैं चने हैं पोटली बंद दिते किसी ने डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का घुट पी लिया लकड़ा कटिया पंडा बनिया सिर के चुकन लगे निरंकार की नेत मारी डांडी मारी रात पे भगवान कृष्ण ने क्या सुनाने हम कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुदामे ने क्या महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन उत्ते चल जाते हैं रात इसलिए बिताने दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी पै गए दूजे उत्ते सुदाम भुख लगी सुदामे ने वो छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी ते छोले थोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लेंगे भुख बड़ी जालम थी तो सुदामे ने की किया छोले वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे यारी सास संगत जिस वेले छोले दंदा थले आए ते सुदामे ने जिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे दान उते बैठे भगवान कृष्ण ने कहा सुदामे कुछ खाना भी सुदामे ने छेती छेती मारा इतने पता की खाने मैं तो कुछ नहीं बेहतर भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बका मारे रवादाई भगवान भी
कहने लगे भी स्वामी हम दिखा रहे हैं। महाराज तो कितना पता है इसे पता तो मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देने वास्ते एवं गरीबा ना विरास न कर भगवान जी बेजुक कर कोई समय में बात प्यारी साल संगत ने सुनाने में तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कहने लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है मारे तो हम कितना पता है भगवान जी कहने लगे सानू आवाज पी आती है दंदा की तो स्वामी ने कि हमारे कुछ ही बड़े को तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर को ठंड लग गई है ते मेरा तो दम से दम पिया बजता है ते तुसी के लिए बुझा कमरे तो उस वेले भगवान पिछे ने बचन कर दिता जाओ दलिद्रिया दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी शरीर जाओ दलिद्रिया तो पितर प्रो कीता है क्योंकि वन के खाना संदगी दिखा के खाना शर्मिंदगी ते खो के खाना गंदगी जो खो के मैं खाता है उसका गंदगी खाता भगवान ने वो वचन किया पूरा हो संदीपा ऋषि को पढ़ के विदय भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी में मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारवाली सुशीला निके निके बच्चे खान कुछ नहीं मिलता है जो सुशीला ने किया कहानी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र सुदामे ने किया था पग भगवान को क्यों नहीं जानते आप भुखे पर मरते जी भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है वो भी को क्यों नहीं जानते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मतीत हो जाए सुनाने ने कि अपना गांव वाली घर तक तेरी खीत है पर मित्र को बदले शर्म ध्यान होती है शर्म का भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं पित्र सुदामा दाल दी पित्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्री जिला है वो भी बड़ा पर्व लागू हुई बावड़ी मिल जगदीश दलिद्र गवाए चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन कट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह उन्हें कोई मुलाकात होगी किस तरह उन्हें कोई पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए उनका नगर द्वारका से सिंह द्वार है कई दिन बाद सिंह धर्मांत भी के जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महिला और अंदर जान लगा दरबार में रो क्या वे किधर जा रहे हैं जी मैं भगवान को मिल सके पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता है पीछे हट कोई गल नहीं मैं अगे ही पता थी गरीबा को होना होते एवं घरवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाएंगे भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र को मिलवा केड़ा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्रवत्ता धर्मे इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू किधरों का मित्र सुदामा रो के कह लगा है दरबार मैं सच की दरबार ने बीज ला के थके मत्थे से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इतनी खैर पहला मैं जाके बेनती कर रहा सुदामा बाहर खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਐ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ

साधन ओके हो दे पीस पका थका सुखे सिर से पागी कोई नहीं कुर्ता भी कोई नहीं।

0: पहला गेट पर रखा, चार परिक्रमा करके सुदामे उसे छाती कर सारा गेट मित्र पाई अजकल मित्र के स्वार्थ पूरा है तो मित्र हम तेरी स्वार्थ पूरा नहीं तो वही मित्र मुखाकृत भी कर लेंगे निंदा भी कर लेंगे जित दिन स्वाओ न उपजे तित दिन बोलन गंध सुदामे जी परिक्रमा करके छाती नाल लेके आए ते जिस आसन से आप देखे सर सुदामे ने बिठा सुखनी से राजा जाओ मेरा मित्र आया है जल ले आओ सुदामे ने जल को रुकनी से राजा पानी कहते भगवान कृष्ण सुदामे नाल पिछे पिछे बदल कर सुदामे कितना चिर पिछे कुमार चंद्र तेरी हालत की हो गई है तेरी दिशा की बन गई है ऐसे बिहार बिहार मुख्यों एक कंटक जाल पड़े पद को तेरे पैर कंधे चुके जितनी कोई भी थी सुदामा जी को
1: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

है, तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पोहे काल, तेरी टेक बिन सह जंजाल।

किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आनन जाना वेसा किन्ही ग्रह

पंडित सा सत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तरभव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।